0: Εκείσα.
1: Αγγί.
0: Και ούτε μπροπάρα.
2: Καρικόμα εκδομή βίτε κοίταμε ρο κοίτα κοντάζελη ροζάιμα πάνω βοήκου τι αλκο βοήφεν βανή ραϊκο σαβανή σίγχαρ μάρ ραϊκο σαν νοβίνε γαουτάμα πρίτι άλε άρτις μορέκο σαν κόρονα στο νοάρα ρίκισα κότρι ραϊκο σαν τεσικερί μάνοβο πίστη πονή ραϊκο σαν ρίξορα μιούζικ μάρ ραϊκο σαν νοβίνε γαουτάμ ραϊκο σαν σαν κοίταμε ράκισε και κοίταμε अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ। यस्तो मिठा गीत सङ्गीत तपाईँले पनि रुचाइमा फाल्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही साथी हुनुहुन्छ भन्दै थिए, ठिकै छ, साथीहरूको सहभागी त कम छ होइन, कतिपय ठाउँमा नेटवर्कले साथ दिएको छैन होइन, पानी पनि परिरहेको छ भनेर साथीहरूले सन्देश पठाउनु भएको छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ,

अजीब हो, प्रकाश का क्या यो धरती अपराधी हर को मात्रे आश्रय स्थल हो रहा? यदि यो धरती लाई विदुष हर को पंजाब टा मुक्त करने चाहिए, अपराध बिना अपराधी हुनु पर्छ निशाना, हाम्रो निशाना।